0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: Watch the drum.
9: Full of these people.
10: Kolkata tram.
11: The highest number of voters.
12: Tamil Nadu votes decisive.
13: Kafra Tafri ka mahal hai. Udhoppon patrao kya gya ha.
14: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
15: TVK headquarters here.
16: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
17: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
18: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
14: So I really love the channel. I saw Shiv sir, and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
19: Happy meeting NDTV.

0: Getting started.
1: अगर टीएमसी, हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक तो काली है, चुनाव का वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो ये भानुमती की कुनबा खत्म हो रही है। अरे होना ही था, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, और भी कुछ पार्टियां ऐसी वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, हम तो दरवाजा बहुत टाइट करके बंद किए हैं, हम जानते हैं कि ये होने वाला था, कोई गलती से ना घुस जाए फिर से, हम भुगत चुके हैं, इसलिए दरवाजा अभी भी बंद है।
2: जो भी सुनिए, स्पीकर का डिसीजन इज एब्सोल्यूट, यू कांट चैलेंज, पूरा सभी टूट जाएगा। तृणमूल ये अनिवार्य था, तृणमूल का ये जो हाल होगा ये सभी का जानकारी था, ये सही हुआ, ये होना चाहिए था। जब दूसरा पार्टी को तोड़ रहे थे ममता बनर्जी, दूसरा एमएलए को तोड़ रहे थे, तब उनको सोचना चाहिए था।
0: With that, we're going to a very short break. More news and updates on the other side.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: द न्यूज़ आयुष सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स पॉइंट पिक्चर दिस द बिगेस्ट स्टेज फ्लड लाइट्स 4K द वर्क्स वेयर इज द हुक देयर्स गोइंग टू बी सेलिब्रिटीज एंड गारंटीड आईबॉल्स वेयर इज द हुक Think about this. Front page advertisements and hoardings.
2: Bro, where's the hook?
1: Cross-platform, digital first, virality.
2: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You gotta be real in a world of reels. You gotta be original in a world where everything seems generated.
1: That's it. That's what we're looking for.
2: The best campaigns.
1: The hottest trends.
2: The smartest brand moves.

0: on our new show.
1: But wait, what do we call it?
0: The Hook.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: India's unshakable news habit.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है?

0: हमारे यहाँ पे सबसे पहले है कि प्लास्टिक को नो प्लास्टिक, यानी हमारे विद्यालय में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का या प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे पानी की बोतल है तो हमारे विद्यालय में स्टील धातु की जो भी बोतल होती है, चाहे स्टील की है चाहे कॉपर की है, उसी में पानी देते हैं। उससे पहले विद्यालय में हमारे मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं थी, और ऊर्जा संरक्षण के रूप में जो है प्लान इंटरनेशनल द्वारा हमारे यहाँ पर 2-3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है और विद्युत की तब से बचत भी हो रही है हमारा।
1: Because when children change how they live, they don't just protect their own health, they become agents of change. They carry new habits into homes and communities that have never had the resources or the knowledge to protect themselves.
2: यहाँ पर्यावरण से संबंधित सारी चीज़ें हैं, हमें A to Z सिखाए जाते हैं। मुझे पहले लगता था कि A से एप्पल ही होता है, B for ball ही होता है, फिर मेरे अध्यापक ने मुझे समझाया कि A for avalanche होता है, B for biodiversity होता है,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?

0: joined us in this long day. Thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: India's unshakable news habit.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
9: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
8: When stories have impact.
10: Padmatar Joshi, managing editor and prime time anchor.
8: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
9: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
11: We've got that first picture of DK Shivakumar with Siddaramaiah inside his residence. Breaking image here on NDTV.
12: This is Breakfast 2.0 because this is a follow-up.
13: The muscle flexing in Bengaluru has begun all over again.
14: The biggest news break.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
9: Now watching NDTV 24/7.
10: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
8: When stories have impact.
11: Bhagwatar Joshi, managing editor.

0: This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब हैं, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितनी थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के कि बचाओ बचाओ बचाओ मदद कर वो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत पसंद इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ब्रेक टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हाजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी तो जाएगी, तो आग लगे तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ, मदद करो। तो हमने उनको इशारा दिया, आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे। बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की। इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए।

0: हाँ वो भी कल बता रहे थे कि आपने गद्दे बिछाए थे।
1: और उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी ब्रेक टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
0: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं। लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
2: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, तो बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाक्य के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ग्रेट टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक

0: what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज की, तो हमें वो अंदाजा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मत करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचा।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाक्य के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ग्रेट टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: नो मोजो।
1: नहीं होगा कर्नाटका में, इफ देर इज अ मेल्टडाउन इन कर्नाटका देन देर इज अ मेल्टडाउन इन तमिलनाडु फॉर द बीजेपी, द होल पार्टी हैज लेफ्ट इन तमिलनाडु।
2: रामलाई हैज
1: सो
2: रिजाइन।
1: दीज आर द डेवलपमेंट्स व्हिच हैपन इन पॉलिटिक्स, नथिंग विल हैपन इन कर्नाटका इफ
0: अरे सर, बट द डिफरेंस इज दैट द बीजेपी इज नॉट इन पावर इन तमिलनाडु, दे नोवेयर क्लोज टू पावर, दे हैव वन एमएलए, क्या ही बिगड़ जाएगा।
1: See, I'm only saying the only saving grace for the BJP in Tamil Nadu was the person who left BJP. So where is the BJP? And all.
0: चलिए बताइए, बताइए, बताइए। देखिए आप, you keep laughing at everyone's meltdown.
3: May I speak? Because Padmaja has called my name and she's referred to Tamil Nadu. Let me address that. Padmaja, very rarely, and I have great regard. Let me also tell you, I'm a good friend of Annamalai. I have great regard for the fact that two parties came together, they tried something unique in Tamil Nadu, it did not work out maturely. Both parties, one BJP and Annamalai, have chosen to tread different paths. That is hardly a meltdown like the kind you see for power that is being done by Muniyappa, by Zameer Ahmed, by also by Mr. Ramalinga Reddy. And by the way, there are people like Jarkioli in the ranks. And it's being done by the Siddaramaiah faction. And just before the Raj Sabha.
0: Ajitoji.
3: So please be very wary.
1: See, यहाँ तो बीजेपी की पार्टी तमिलनाडु में गायब हो गई, अभी तो सरकार है भाई।
3: हमारा विधायक कौन है तमिलनाडु में? Who's our विधायक? Who's our MLA in तमिलनाडु?
1: See, I know the BJP is praying, but tell me who in Karnataka is a BJP leader? Who? Just give me random number.
4: But
3: I will tell you 10 people.
4: Right from
3: Pralad Joshi, right from Tejasvi Surya.
1: BJP doesn't have
3: right from R. Ashok. We have a plethora of leaders.
1: Buy from others.
4: Ashutosh, एक जगह पे fraud है आपका argument. तमिलनाडु में बीजेपी थी कहाँ जो चली जाएगी? आप
1: क्या मैं कह रहा हूँ?
4: अधिकारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि टीएमसी का सत्यानाश हो तो उनके लिए रास्ता बने आने का, सो दैट इज समथिंग वी टॉक अबाउट इंडिया अलायंस, दे आर ईटिंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स डिमाइज, हाउ दे आर
1: फाइव सेकंड्स
0: ओनली फाइव सेकंड्स आई रियली मस्ट ब्रिंग इन
1: यशवंत, बीजेपी के पास लीडरशिप है कहाँ? कांग्रेस से हिमंता को लेके आते हैं, टीएमसी से सुवेंदु को लेके आते हैं, बम्बई को जो है वो जनता दूसरी पार्टियों से,
3: वेयर इज द लीडरशिप? व्हाई दे कांट रिटेन?
1: वेयर इज द लीडरशिप?
3: दैट इज द क्वेश्चन टू आस्क कि कांग्रेस क्यों रिटेन नहीं कर रही है
0: सर। द मूट पॉइंट इज हु इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड व्हिच वे द विंड्स आर ब्लोइंग पॉलिटिकली, एंड सिंस यू सेड बीजेपी खत्म हो गई, आई वांट टू जेंटली पॉइंट आउट आशुतोष जी, बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 4 एमएलए का फर्क है तमिलनाडु में, कांग्रेस हैज गॉट 5 एमएलए एंड बीजेपी हैज गॉट 1 एमएलए, बट
2: 400%
3: दैट इज योर शोइंग योर ट्रू स्टूडेंट ऑफ राहुल गांधी,
0: दैट इज एक्सीलेंट। सज्जन कुमार, व्हाट इज द कोहेरेंस इन INDIA, हु इज गोइंग टू टेक ऑन नरेंद्र मोदी इन 2029? एंड आई एम कोटिंग द एग्जांपल ऑफ कर्नाटका एज जस्ट वन, लाइक वी सेड एट द बिगिनिंग, वी सॉ व्हाट हैपेंड इन द एमएलसी इलेक्शंस यस्टरडे, 7 सीट्स वर गिवन अनकंटेस्टेड टू द महायुति।
2: Yes.
0: How are you going to fight the BJP if your own people do not file their nomination?
5: No, for any alliance, you need a credible anchor, not just an anchor. Congress could be an anchor, but it's about the credibility. Congress cannot have two. One, they remember the Panchmadhi resolution of Ekla Chalo, go alone, you know, and discard the regional party, Congress being the natural party of governance. That is the mindset when you talk to the Congress people internally and subjectively. They want, they cherish, they relish the decimation of regional allies who are anti-BJP because they think we are going to be the natural benefit. Many of them quip that...
0: Which is fine. You can demolish your regional allies, but at least win. Because regional allies will then say when you fight BJP head-to-head, like in Assam, what do? You collapse in front of the BJP, but then you demolish us also.
5: Exactly.
0: So, hum to dubenge Sanam type ka wo hai na.
5: So, if you see the history of electoral democracy in India... Today's BJP position is that of Nehruvian Congress, not even Indira Gandhi's Congress. Mm. It's so hegemonic that you can say which would be the prime opposition. Would it be left, CPI or Jan Sangh or Swatantra Party? You know, 52 some party, someone else, 57 someone else, 62 someone else. But they all are marginal because they are fractured. At this juncture, you talk about the India bloc, you talk about lots many regional parties. Who are the ones? All three-wheelers and pickup trucks, you know, on a national highway cannot pull an 18-wheeler BJP into the opposite direction. And the only truck that is with the shutdown engine is Congress, you know. So therefore, where is the anchor? Where is the force? You know, in Bengal, people are talking about Mamata Banerjee may come back. This is the Gen Z of Bengal. I'm talking specifically about the Bengal, not other

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operating. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरिस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लग गई तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब हैं, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद कर वो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।

0: वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
0: यहाँ पर हमारे एमएलए साहब सतीश उपाध्याय जी वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
0: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी बेड टाइम से आ गए, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं। लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
2: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy, which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गईं। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी तो जाएगी, तो आग लगती तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ, मदद करो। तो हमने उनको इशारा दिया, आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे। बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की। इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी बेड टाइम से आ गए, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviyanagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviyanagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लग गई तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितनी थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद कर वो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी।

0: ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचा।
1: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
0: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाक्य के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
1: यहाँ पर हमारे एमएलए साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
0: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
1: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी बेड टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
0: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं। लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
2: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviyanagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviyanagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरिस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लग गई तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद कर वो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत तसल्ली इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाक्य के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ग्रेट टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरिस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब के ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लगते तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब हैं, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितने थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया, वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद करो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत पसंद इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और कि उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी बेड टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
9: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJ. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
8: When stories have impact.
10: Padmasar Joshi, managing editor and prime time anchor.
8: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
9: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
11: We've got that first picture of DK Shivakumar with Siddaramaiah inside his residence. Breaking